0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 a.m.
2: 6 सितंबर यौम दिफा व शहदा शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए शहदाए पाकिस्तान को सलाम.
1: This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं. दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए. ट्रैफिक कानूनों की पाबंदी कीजिए.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Area 2 secure, sir.
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक।
2: 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी, तुझे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में नामानी।
1: ऐ राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, ये दिन है वतन से मोहब्बत के इजहार का, वतन के लिए जान कुर्बान करने का, शहीदों को सलाम पेश करने का।
2: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
3: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
4: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: 6:08 AM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनाटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोपराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
4: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: सर सर नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिंसों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
7: आज सुबह किसी का व्हाट्सएप और किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया और कहीं एक बिजनेस साइबर अटैक का शिकार बन गया। साइबर अटैक सिर्फ सिस्टम्स को नहीं, जिंदगियों को भी टारगेट करते हैं। इसीलिए इग्नाइट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द 5th डिजिटल पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन। हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स, रेड एंड ब्लू टीमिंग कॉम्पिटिशन्स। अगर आप स्टूडेंट हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल या एथिकल हैकर, पाकिस्तान के अगले साइबर डिफेंडर बनिए। Register now at cyberhackathon.pk.
8: Pakistan is building a safer

0: 8:15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: 6 September, Yom Difa o Shohada. Shahidon ke un saathi, un ghaziyon ko salam, jo hamare khwab pure karte hue khud adhure ho gaye. Shohadae Pakistan ko salam.
2: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? Schwabe Single Remedies मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और Schwabe Single Remedies, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.

0: एरिया टू सिक्योर सर।
1: एरिया टू सिक्योर सर।
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक।
2: 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
4: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोपराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इनक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
7: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: पाकिस्तान इज बिल्डिंग अ सेफर स्मार्टर डिजिटल इकोसिस्टम एंड वी नीड योर टैलेंट। Step up, build a cyber safe life and unlock premier careers in cyber security at the 5th Digital Pakistan Cyber Security Hackathon. Organized by Ignite under the Ministry of IT and Telecom, join hands-on training workshops in 16 cities and secure your future. Registrations are open now at cyberhackathon.pk.
5: This program is brought to you by HBL Freedom Account, Jahan Khab वहाँ HBL
9: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
7: एंड सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
10: लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
2: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
3: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
4: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
5: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
7: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
8: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाए।
7: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
9: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
7: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
9: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
9: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
7: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझे।
7: आइए वेट से आगे का सोचें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: in setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज़ायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
2: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
5: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
6: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365।
8: FM 247365।
9: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
8: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: किसने कहा था पैसे?

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL
1: and स्वागत खानम कराची की तकलीफ
2: and सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
3: and

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix
1: laga aur bhul ja. Area 2 secure sir.
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती हैं। ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: एंड स्वागत खानम कराची की तकनीक
2: एंड सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: खवातीनों हजरात, मंशियात वो जहर कातिल है जिसकी संजीदगी का एहसास इंसान को तब होता है जब ये जहर हमारी रगों में जायद कर चुका होता है। वक्ती सुरूर और मजे का लिबादा उड़े ये लानत गैर महसूस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को अपने शिकंजे में ले रही है। मंशियात की लानत में गिरफ्तार होने की एक बड़ी वजह बुरी सोबत है, जिसको अमूमी तौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि दरअसल इस अमल का ताना बाना बुरी सोबत और मेल जोल से जाके जुड़ता है। घर देर से लौटना, वालदेन और घर वालों से नजरें चुराना, खानदान और अहबाब की महफिलों से गुरेज करना, गैर मामूली अखराजात में इजाफा, ये सब इसकी बड़ी अलामत है। खुदा रा अपने बच्चों पे नजरें रखे ताकि वो ताहयात आपकी नजरों के सामने रह सके। हमारा आसिम एक कौम, एक मंजिल और मंशियात से पाक पाकिस्तान।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
3: किसने कहा था पहले?

0: 6 सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
1: अपने मुल्क को काम के लिए बाद है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम।
2: इन setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोपराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
4: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
5: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBO।
6: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
5: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 11 a.m.
1: Area 2 secure, sir.
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है। छह सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
0: On facebook.com/FM247365.
4: Let's celebrate
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती हैं। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान

जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए, ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

0: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
1: In setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: Like us on facebook.com/fm247365
3: fm247365। कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं लहू से लिखी जाती हैं। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

6 सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: 6 सितंबर यौम दिफा और शहदा शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए शहदाए पाकिस्तान को सलाम
0: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247 365 FM 100
1: 31 साल FM 100 आपकी आवाज अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान
0: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान पाकिस्तान
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं लहू से लिखी जाती हैं 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Area 2 secure, sir.
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है। छह सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
4: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
4: FM 247365। कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती हैं। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

0: It's 12:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान। इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
3: पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सी औरतों को माली, जिस्मानी, ज़हनी और जिनसी घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप किसी के शौहर, वालिद, भाई या बेटे हों, अपना स्ट्रेस और फिक्र को अपनी बीवी, बेटी, बहन या वालदा पर हरगिज़ ना निकाले। हुकूमत पाकिस्तान ने घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरतों के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1099 के साथ हेल्पलाइन 1099 ऐप का आगाज किया है, ताकि हमारे इदारे उनकी भरपूर मदद कर सकें। अगर आप या आपके जानने वाले घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1099 ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। होम स्क्रीन पर अपना नाम, फोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके साइन अप करें। हंगामी हालात की सूरत में जहां आपकी या किसी की जान खतरे में हो, लाल बटन का इस्तेमाल करें, जिससे मुतल्लिका इदारे आपकी मदद के लिए फौरी हरकत में आ जाएंगे। तफसीली शिकायत के लिए सब्स बटन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप तहरीरी शिकायत के साथ वीडियो, तस्वीर और ऑडियो सबूत भी जमा कर सकते हैं। याद रखिए, घरेलू तशद्दुद कानूनन जुर्म है और हम सबको मिलकर इसे रोकना है। तशद्दुद से तहफ्फुज आपका हक है। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: 100 FM।
5: हाय फ्रेंड्स, आई एम मिकाल ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम नॉट स्पीकिंग टू यू एज अ पब्लिक फिगर बट एज समवन हू केयर्स अबाउट योर फ्यूचर। We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: पाकिस्तान में बढ़ते फैकिंग के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। रोजाना आम शहरी, बुजुर्ग, खवातीन, तुलबा और कारोबार से वाबस्ता अफराद अपने व्हाट्सएप अकाउंट से महरूम हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको दो अहम बातों पर रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, और मुस्तकबिल में व्हाट्सएप को दोबारा हैक होने से कैसे महफूज रखा जा सकता है। आइए देखते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे होता है। पाकिस्तान में आमतौर पर व्हाट्सएप हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके। आपको व्हाट्सएप या किसी करने वाले के नाम से पैगाम आता है कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, या ये 6 हिंसों का कोड भेज दे। बाज़ औकात ये पैगाम किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से आता है जिसका अकाउंट पहले ही से हैक हो चुका होता है। लोग लाइल्मी या जल्दी में 6 हिंसों का तस्दीकी कोड शेयर कर देते हैं। बस इसी एक गलती से हैकर आपके व्हाट्सएप का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है। याद रखें, व्हाट्सएप का तस्दीकी कोड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। ना व्हाट्सएप खुद मांगता है, ना कोई अदारा और ना कोई दोस्त। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फौरन क्या इकदाम उठाने चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है तो घबराए नहीं, अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप डिलीट करें और दोबारा इंस्टॉल करें। साथ ही अपने दोस्तों और खानदान को किसी और नंबर से इत्तला दें कि अगर आपके नाम से कोई मशकूक पैगाम आए तो इस पर हरगिज़ यकीन ना करें। अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो व्हाट्सएप पर रजिस्टर्ड था। व्हाट्सएप आपको SMS या कॉल के जरिए 6 हिंसों का तस्दीकी कोड भेजेगा। ये कोड दर्ज करें। ज्यादातर केसेस में इसी मरहले पर हैकर की रसाई खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस को इजाजत देता है। अगर तस्दीकी कोड ना आ रहा हो या पिन लगा दिया गया हो, अगर हैकर ने आपके अकाउंट पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया है और आप लॉगिन नहीं हो पा रहे, व्हाट्सएप आपको ऑप्शन देता है 7 दिन बाद दोबारा कोशिश करें। 7 दिन बाद व्हाट्सएप आपको बगैर पिन के लॉगिन करने की इजाज़त देता है, लेकिन सिर्फ उसी नंबर पर। इस दौरान ये बातें लाजमी याद रखें। सिम कार्ड अपने पास और फॉल रखें। नंबर बंद या सस्पेंड न होने दें। व्हाट्सएप बार बार इंस्टॉल न करें। ईमेल के बगैर अकाउंट फॉल। अगर आपने ईमेल एड्रेस शामिल नहीं किया और पिन भी याद नहीं, व्हाट्सएप फिर भी 7 दिन बाद आप آپ کا اکاؤنٹ فعال کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو۔ سم کارڈ سب سے اہم ہے۔ اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ رابطوں کو فوری اطلاع دیں۔ اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں۔ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں، اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں۔ سیٹنگز، اکاؤنٹ، ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن، یہاں ایک 6 حصوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو۔ ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں۔ ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے۔ اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو۔ کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے۔ جعلی لنکس اور آفر سے بچیں۔ مفت انٹرنیٹ، انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ ایسے لنکس پر کلک نہ کریں۔ واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں۔ سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں۔ فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں۔ اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں۔
4: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
7: کچھ کہانیاں لفظوں سے نہیں لہو سے لکھی جاتی ہیں۔ 6 ستمبر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ اس ماں کے آنسو ہیں جس نے اپنے بیٹے وطن پر قربان کیے۔ یہ اس جوان کا لہو ہے جو لاہور کی سرحد پر آخری گولی تک لڑتا رہا۔ 1965 میں دشمن نے ہماری زمین کو دیکھا تھا لیکن اسے ہمارے حوصلوں کا اندازہ نہیں تھا۔ آؤ اس 6 ستمبر ان شہیدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا، وطن رہے گا تو ہم رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔

আসসালামু আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম পাকিস্তান। মেরা নাম নদীম আখতার, প্যার সে আপ লোক মুঝে কেতে হো এনে সোনে। ইয়োম দিফা কে হওয়ালে সে খুসুসি নশরিয়াত মে নদীম আখতার আপকো খুশ আমদীদ কেতা হে। 6 সেপ্টেম্বর হে আজ জনাব, ইয়োম দিফা খুসুসি নশরিয়াত FM 100 পর আপ সুন রহে হ্যায়। ইসমে শামিল হোনে কা বহুত হি আসান সা তরিকা হ্যায়। নশরিয়াত মে আপনে মোবাইল কে রাইট মেসেজ মে যাইয়ে কে চাই লিখিয়ে স্পেস দিজিয়ে আপনা প্যারা সা নাম প্যারা সা মেসেজ অর উসকো সেন্ড কর দিজিয়ে 3636 পর। অর মেসেজ কর কর ইয়োমে দিফা কে হওয়ালে সে আপকে দিল মে জো মোহাব্বত হ্যায় হামারি পাক আফওয়াজ কে সাথ উসকা ইজহার কর সকতে হ্যায়। और तमाम लिसनर्स को पता है कि मैं कोई ना कोई सवाल फ्लोट करता हूं, आप देते हैं उसका जवाब। ये रेगुलर शोज में होता है, मगर आज के शो में भी होगा। आज के शो में भी मैं आपसे कोई ना कोई सवाल जरूर पूछूंगा और आप देंगे उसका जवाब, और देना चाहिए आज आपको ज्यादा से ज्यादा। 6 सितंबर यौमे दिफा, और यौमे दिफा हम क्यों मनाते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है ये, इसका जवाब आपने मुझे देना है 3636 पर। और इस हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो पाक अफवाज है, बचपन से लेकर और अब तक ये एहसास हमें रहता है और हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि हमारी पाक अफवाज जो है वो सरहदों पर मौजूद है, और जब भी दुश्मनों ने जो है हमला करने की कोशिश की है तो इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब एक इसकी सिंपल सी एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। और मिसाल मैं आपको ये देना चाहूंगा कि बच्चे जिस तरह अपने मां बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, और बाप का साया जिनके सर पर सलामत होता है तो उसको एक सिक्योरिटी होती है कि बाप घर पर आएगा, कुछ ना कुछ हमारे लिए लेकर आएगा। या घर की औरत जो होती है उसको भी वो भी सिक्योर फील करती है कि भाई किराए का कोई मसला नहीं है, राशन का कोई मसला नहीं है। वो जो है मर्द घर से बाहर निकलता है और मेहनत कर रहा होता है, और घर वालों को उनकी जरूरियात, उनकी सहूलतें जो उनको वो उनको दे सकता है वो उनको मुयस्सर करता है। इसी तरीके से जब हम वो जो सिक्योर फील कर रहे होते हैं, अपने आप को महफूज जो महसूस कर रहे होते हैं बाप के साए तले, यही अगर हम अपने पूरे पाकिस्तान के हवाले से सोचें तो हम अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं जब हमारे पाकिस्तान के फौज के जवान जो हैं वो सरहदों पर हिफाजत के लिए बैठे होते हैं, ड्यूटीज दे रहे होते हैं। और ऐसी ऐसी जगह ये मैं आपको शो के साथ साथ बताता रहूंगा। फिलहाल हम वार्म अप करते हैं पूरे पाकिस्तान को इस खूबसूरत से कौमी नगमे के साथ।

0: वेलकम बैक होगा सुनियो आप सबको 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से आप खसूसी नशरियात सुन रहे हैं और मैसेजेस आप कर सकते हैं कि चाहे स्पेस आपका नाम आपका मैसेज जिसको सेंड करेंगे आप 3636 पर चंद मैसेजेस आपके शामिल करते हैं और फिर यौम दिफा के हवाले से कुछ बात करेंगे। एजाज तनोली साहब कह रहे हैं भाई आपको और सारे तमाम लिसनर्स को सलाम से 6 सितंबर 1965 एक यादगार दिन कभी ना भूलने वाला दिन पाक फौज को सलाम है। वालेकुम अस्सलाम पाक फौज की जानिब से। और उसके साथ ही साथ जनाब संजू भी आ गए हैं और संजू के मैसेजेस यहां से जनाब शुरू यानी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नदीम सलामती और आफियत की अनगिनत दुआएं अल्लाह पाक आप पर और आपके घराने पर बहुत खास करम और रहमतें साथ हों इलाही आमीन। यकीन है कि अब आप पहले से बेहतर होंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह जी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तबीयत। और पिछले प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकी थी वजह मौसम का शदीद असर था मोबाइल उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और कहती हैं कि ये निशान नज़्म तारिक ज़रब कासिम की मिसाल क़ुव्वत बाज़ू खालिद सैफ रब जुल जलाल ये गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक के ये हैं बिलाल और अर्ज़े पाकिस्तान तेरे इन ये गुलामान मोहम्मद दीन हक के हैं हलाल अर्ज़े पाकिस्तान तेरे इन हिलालों को सलाम ए वतन जान तेरे जियालों को सलाम। उम्मीद फाजली साहब का ये बहुत ही खूबसूरत सा इंतखाब इन्होंने भेजा है और कहती हैं कि आज के दिन की अहमियत को उजागर करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। हमारी जिंदगी में इसकी अहमियत क्यों है। 6 सितंबर 1965 को भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए जाने वाले अचानक हमले के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्ला फौज और पूरी कौम की जुर्रत और दफाई अज़्म की याद दिलाता है। शहदा को अकीदत खराज अकीदत इस दिन वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। कौमी इत्तेहाद ये दिन पाकिस्तानी कौम में इत्तेहाद यगानत और मुल्की सलामत के अज़्म का मजहर है। और इस हवाले से इनके और भी मैसेजेस हैं और वो हम साथ ही साथ शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। हमारी प्यारी सी बहन लॉरिन तौसीफ भी आ गई हैं कहनी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई यौम दिफा मुबारक हो आपको और हसीन तरीन समातों को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश खिदमत है। हम यौम दिफा इसलिए मनाते हैं ताकि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों और शहदा को अकीदत पेश कर सकें और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने और नदीम भाई आपके मुंह के छाले ठीक हुए जी पहले से बहुत माशाल्लाह से बेहतर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की दुआओं का। अच्छा यौम दिफा के हवाले से थोड़ा सा माजी पर नजर डालते हैं और वैसे जो है वो ये जो आज का दिन है हम अपने बहादुर सिपाहियों और शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 6 सितंबर 1962 हमारी तारीख का वो यादगार दिन है जब पाकिस्तान ने अपनी सरहदों की दिफा के लिए बेमिसाल अज़्म हौसले और बहादुरी का मुजाहरा किया। हमारी मुसल्ला फौज ने दुश्मनों के मुकाबले में जिस जुर्रत का मुजाहरा किया वो हमारी कौमी तारीख का एक अहम बाब है। अब वो कैसे है ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन उसके साथ साथ आज का ये दिन यौम दिफा सिर्फ जंग और फौजी कुर्बानियों को याद दिलाने का दिन ही नहीं है बल्कि यकीन मानिए कि ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है इत्तेहाद नज़्म व ज़ब्त हुब्बुल वतनी और कुर्बानी का भी पैगाम है। अब वो कैसे है कि 6 सितंबर को अचानक एक तो होता ना जैसे अभी आप आजकल देख रहे हैं ये मैं जेंजीज के लिए कह रहा हूं कि आजकल आप ये देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका और इजराइल की जो है जंग हो रही है इसी तरह फलस्तीन भी जंग में है اور بھی کچھ ممالک ہیں جو جنگ میں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے حملہ کر دیا جاتا ہے اور پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بھائی بات گڑبڑ ہے، مذاکرات نہیں ہو رہے، اور ان مذاکرات کے فیل ہونے کے نتیجے میں جی بمباری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل اچانک اچانک پاکستانی جو ہیں وہ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور اچانک سے جو ہے وہ انڈیا نے بھرپور طریقے سے پاکستان پر حملہ کر دیا، بھرپور حملہ، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور یہ حملہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں سے میزائل گرا دیے، 1965 کی جنگ تھی یہ، اس وقت میزائلوں کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا سلسلہ کا، ہاں ٹینک تھے، بم تھے، جہاز تھے، جنگی جہاز، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج آرمی جو ہے وہ زمینی جنگ جو ہے، اصل جنگی یہی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ کار اس طرح ہوا کہ وہ اچانک جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا، اور پلک جھپکتے ہی پاکستانی افواج جو ہے، ہائے یار میرا دل جو ہے نا وہ بھرا ہے، یقین مانے، پلک جھپکتے ہی انہوں نے اللہ کا نام لے کر ہماری پاکستانی افواج نے ان کو ایسا جواب دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھی کھڑی ہو گئی، سب ایسا جذبہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. جب ہم اپنے والدین سے یہ چیزیں سنی ہیں تو یقین مانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جذبے سے، جوش سے. اور ڈٹ کر جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور دشمنوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم چائے جو ہے وہ لاہور میں جا کے پیئیں گے، اتنے کانفیڈنٹ تھے وہ. ایک اور ہم جو قوم ہے، ایک قوم ہے اور ہماری ایک منزل ہے، پوری قوم جو ہے اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اور اب جو ہے آپ کو اس چیز کو، اس قصے کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے، آپ کے میسیجز بھی ساتھ میں شامل کرتے رہیں گے. لیکن ایک قومی نغمہ،
1: پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے.

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान। इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
2: In setting up low-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोपराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: Us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है। वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
6: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
7: हमारी जिम्मेदारी है। खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।
8: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। यौमे दिफा के हवाले से खुसूसी नशियात आप FM 100 पर सुन रहे हैं। मैसेजेस कर रहे हैं आपके चाय स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज जिसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से मैसेजेस जो है आपके आ रहे हैं खुसूसी तौर पर समझू के इस हवाले से, यौमे दिफा के हवाले से, और बड़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी वो बता रहे हैं जो कि आपकी समाधों तक पहुंच रही है। और अभी कहती हैं कि 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग अपने से 10 गुना बड़ी कुवत और दुश्मन को जिल्लत आमेज पसपाई और शिकस्त पर मजबूर किया और इसका तकब्बुर खाक में मिला दिया था। हमारी अफवाज ने जुर्रत और हिम्मत से काम लेते हुए अपनी जानों की परवाह न करते हुए खतरात का सामना किया। अल्लाह ताला ने तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल किया और उन्हें सुरखुरू किया। अच्छा जनाब संजू जी, और भी इस तरह के बड़े खूबसूरत खूबसूरत से वाकये हैं और इस मैसेज में जो एक

इस मैसेज में जो एक आप लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि 17 रोज तक ये जंग जारी रही थी और आप सोचें 17 रोज तक जंग जारी है भरपूर तरीके से गोला बारूद। जो ये सोच रहे थे कि बस हम जाएंगे और जाकर बैंड बजा देंगे और फिर सुबह की चाय वहां पिएंगे, एक दिन का जो ये सोच रहे थे कि हम एक ही दिन में इनको पसपा कर देंगे, दुश्मन की बात कर रहा हूं, और उनको डटकर मुकाबला किया 17 दिन तक हमारे पाक अफवाज ने। और फिर उसके बाद ये सिर्फ 17 दिन तक मुकाबला नहीं किया, शिकस्त भी दी। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के फौजी जवान भी, अच्छा ये बहुत सारे वाकयात जो हैं जो कि अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोगों की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने वालिदैन से बहुत कुछ सुना हुआ है इस हवाले से, वो वाकयात लिखे हुए नहीं है, ये भी आपको बताऊं। बहुत से ऐसे मेरे लिसनर सुनने वाले ऐसे होंगे जिन्होंने ये वाकयात अपने वालिदैन से सुने हुए हैं, डिफरेंट वाकयात सुने हुए हैं। हमने तो ये पढ़ लिया ना कि भाई पढ़ लिया और आप तक ये बात पहुंचा दी, और ये एक यही फर्क है कि जिन्होंने वो जंग देखी उनका जो बयान, ये किस्सा बयान करने का जो तरीका है वो बहुत मुख्तलिफ जज्बे वाला है, लेकिन अगर हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो बस हम थोड़े से जज्बाती होंगे, दैट्स ऑल। लेकिन आप यकीन मानिए कि जो जज्बा हमारे बड़ों में था जिन्होंने जंग देखी है, मैं आवाम की भी बात कर रहा हूं, तो उनके साथ साथ जब उन्होंने अपनी औलादों तक ये बात पहुंचाई जिनमें मैं भी शामिल हूं, तो आप यकीन माने हम में भी वही जज्बा आ जाता है। और ये एक ऐसा मतलब जब अपने मुल्क की बात आ जाती है तो खुद ब खुद अंदर से जो है ना ये जज्बा उजागर हो जाता है। और आपको एक बहुत मतलब मैं अपना तज्जिया आपको बता रहा हूं कि दुश्मन इस हवाले से बहुत हैरान और परेशान और सरप्राइज भी होता है कि अगर मुल्क के हवाले से कि मुल्क की दिफा के हवाले से अगर कोई बात आ जाए, कोई भी बाहर का दुश्मन जो है वो मुल्क के खिलाफ कोई बात कर दे या जंग का कोई धमकी दे दे, तो पूरी कौम मतलब हमारी पाक अफवाज तो एक है ही और इंशाल्लाह ताला रहेगी, लेकिन पूरी कौम एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है और पाक अफवाज के साथ उनके पीछे उनके बैकअप पर खड़े होते हैं और उनके उनको ये इस चीज का एहसास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं। और वाकई में हकीकत में ऐसा है, और आज हम ये भी पैगाम अपनी पाक अफवाज को देंगे, अपनी पूरी कौम की जानिब से मैं अपने पाक अफवाज को ये बता रहा हूं कि हम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह 1965 में 6 सितंबर को पाक अफवाज के साथ जो पाकिस्तानी आवाम जो है वो साथ शाना बशाना खड़ी थी, अच्छा अब पाकिस्तानी आवाम ने इस जंग में किस तरह जो है पार्टिसिपेट किया, अब जो बातें सुनी हुई हैं उनमें हो सकता है कि कुछ हकीकत ना हो और हो सकता है हकीकत हो, लेकिन इसको मैं हकीकत इस वजह से मानता हूं कि अगर हमने अपने बड़ों से सुना है तो दूसरों के बड़ों से भी सुना है जिन्होंने देखा, अरे भाई ये हुआ था, हाँ लोग अपने घरों से बर्तन लेकर सुनाए निकल गए थे, आवाम जो है अपने घरों से बर्तन लेकर डंडे शंडे लेकर जो है अपने घरों से मर्द सारे निकल गए थे और घर की ख्वातीन ने अपने मर्दों को कहा जाओ जाके लड़ो, हालांकि इस चीज का भरपूर तरीके से खतरा लाहक था कि इनकी जान भी जा सकती है, मगर हमारे मुसलमानों ने ये अल्लाह ताला की करम है बहुत बड़ा, ये शहादत का जो जज्बा है वो हमें आगे लेकर जा रहा होता है, तो शहादत का जज्बा जो है वो तो था ही, मुल्क से मोहब्बत भी थी पाक।

फौज का साथ भी था और हम जो है वो आगे बढ़े। मैसेजेस आपके 3636 पर आ रहे हैं, आपको लेकर जाएंगे एक और कौमी नगमे की जानिब।

0: वेलकम बैक कहेंगे मेरा ईमान पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। और संजू कहती है कि वालिदैन से मालूमात का अपना अंदाज था जो रुला देता था बेशक, मगर हर दिन की अहमियत को महसूस करके बढ़कर अगर आगे पहुंचाना है तो वो भी वतन से मोहब्बत का इजहार होता है। वाह वाह वाह वाह क्या बात की, क्योंकि वतन की मोहब्बत की दिल में मोहब्बत दिल में मौजूद है जो दिलचस्पी लेकर आपके जरिए पहुंचा रहा है, वरना आज भी हम 21 तोपों को सलामी भेज रहे हैं या शिरकत नहीं कर रहे हैं। अहम ये बात होना चाहिए बड़ों से मिले वाकयात हों या पढ़े हों उसको शेयर करना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा हमने जो सुना है उसमें ये है कि टैंकों की एक बहुत बड़ी तादाद, अब ये सुनी हुई बात बता रहा हूं मैं आपको, पहले बता रहा हूं ये पड़ी हुई बात आपको नहीं बता रहा, कि जो हमने अपने बड़ों से सुनी कि टैंकों की एक बड़ी बहुत बड़ी जो है वो तादाद जो है वो उसके साथ हमला करने के लिए जब वो पाकिस्तान की तरफ वो टैंक आ रहे थे तो हमारे बड़े बताते हैं कि पाकिस्तानी आवाम की बात बता रहा हूं कि हमारी इस कौम के जो है जो जवान हैं वो हमारे पाक अफवाज के पास चले गए थे और उन्होंने पाक अफवाज को ये कहा था कि आप बम हमें दें हम अपने जिस्मों से बांध कर और टैंकों के नीचे चले जाएंगे। ये हमने वालिदैन से सुनाया बड़ों से सुनाया अपने और ऐसा किया भी। अच्छा पाकिस्तान मतलब हमारे पाक जवानों के साथ ये बेसिकली ये अमल जो है हमारे पाक जवानों ने किया। अब आप देखें सामने से टैंक आ रहे हैं और टैंकों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आ रही है और दुश्मन को ये यकीन है कि इतने ज्यादा टैंक्स जो हैं वो हम लेकर जाएंगे तो और उनको ये भी पता है कि इनके पास इतने ज्यादा टैंक्स नहीं है और इन टैंकों के जरिए हम गोला बारूद जो है इन पर बरसाएंगे और फतह हासिल कर लेंगे, हमारे टैंकों को तो कुछ होगा नहीं। इस वाकये को आगे लेकर जाएंगे लेकिन अभी जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने।
1: It's 2:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद। महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय शौकत खानम कराची की तकलीफ।
3: अभी राजा उस्ताद आ जाएगा फिर मुझे कमरे में ले जाकर गलत तरीके से हाथ लगाएगा और किसी को बताने से भी मना करेगा।
4: हमारे माशरे में जिंसी बदसलूकी के वाकयात सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं होते बल्कि लड़के भी इसका शिकार होते हैं। लड़के और लड़कियों दोनों की हिफाजत का ख्याल रखें, दोनों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, अगर कोई इनकी मर्जी के खिलाफ इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिंसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है, तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें, डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
7: FM 100 लाइक अस। is facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: वेलकम बैक कहूंगा। कौमी नगमा अभी हम शामिल करेंगे तकरीबन समझ लीजिए कि एक डेढ़ मिनट के बाद, क्योंकि अभी एक डेढ़ मिनट के बाद हमने जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने, तो ब्रेक के बाद जो है हम कौमी नगमे की जानिब जाएंगे। तो मैं शोहदा के हवाले से, हमारे जो 6 सितंबर 1965 में जो हमारे शोहदा हैं उनके नामों में स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद का नाम तो मैंने आपको बताया और उनकी तफसील भी आपको बताई थी, कैप्टन अब्दुल जलील औरकज़ई शहीद, और कश्मीर में कालीधार के मकाम पर जो है ये दुश्मन की सिक्योरिटी पोस्ट जो थी उन पर कब्जा इन्होंने किया था 1965 में, और इस कार्रवाई के दौरान जो जामे शहादत इन्होंने नोश फरमाई थी, कैप्टन अब्दुल जलील साहब, ये भी नाम जो है ना ये हमें जेहन में रखने चाहिए। अच्छा, मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का जो है वो उनको निशाने हैदर भी मिला था, बहुत बड़ा कारनामा था उनका, और ये नाम जो है वो मतलब हमारे कोर्स में भी शामिल है अजीज भट्टी शहीद। तो और इनका कारनामा तो वैसे जो आप पढ़ते हैं वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से सुना है वो भी वाकया जो है कमाल का है। और मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के हवाले से जो है हम जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी उनका जिक्र खैर अगर शुरू कर दिया तो फौरन ब्रेक का टाइम हो जाएगा, तो ब्रेक के बाद हम जाएंगे एक कौमी नगमे की जानेब, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से फिर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो जाएंगे जनाब एक छोटी सी ब्रेक की जानेब।
1: एरिया 2 सिक्योर सर।
2: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है। छह सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
4: This program is brought to you by
5: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
4: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

Welcome back, सुनो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब मेरा नाम है अदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो NA सुनो। आप यकीन मानिए कि वक्त बहुत कम है, बहुत कम है अपनी पाक अफवाज के कारनामों को बयान करने के लिए। मैं बस अभी आपको तफसील बहुत ज्यादा नहीं बता सकूंगा वक्त की कमी की बायस। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के हवाले से आपको बताऊं कि ये लाहौर की जानिब बरकी सेक्टर में जो है 5 दिन और 5 रातें मुसलसल दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमाई है और निशाने हैदर से नवाजा गया इनको और कामयाबी भी हासिल की। इसके अलावा आपको सिर्फ नाम बता दूंगा और तफसील नहीं बता सकूंगा। मेजर जो काबिले जिक्र जो नाम है मेजर मियां रजा शाह शहीद। अच्छा एक और सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि छंब सेक्टर जो है ये बड़ा खास मतलब इस हवाले से जो है वाकयात हैं और आपको वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा। और इसी तरह मेजर शाह नवाज शहीद हैं, कैप्टन गुलाम मुर्तजा शहीद हैं, मेजर अमानुल्ला शहीद हैं, स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर गाजी शहीद मतलब वो गाजी थे और बाद में शहीद हुए। तो एक सिर्फ वाकया जो है संजू ने भेजा ये मतलब ये हमारी पाक अफवाज का जो कारनामा है वो तो हम बयान कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ जो अवाम उनके साथ जो खड़ी रही है कि जब फौजियों को जब खून की भी जरूरत पड़ी थी तो यकीन मानिए कि अवाम की कतार लग गई थी, लंबी चौड़ी कतार थी। और उसके बाद मतलब खून के लिए जब डी फ्रीजर्स मतलब फ्रीजर्स जो खत्म हो गए तो लोगों से फ्रिज लोगों ने अपने घरों के लाकर जो है वो वहां पर रख दिया और उसमें खून को महफूज किया फौजी जवानों के लिए। और एक वाकया जो है वो बड़ा काबिले जिक्र है एक नौजवान का भी, वो भी मैं वक्त की कमी के बायस बयान नहीं कर सकता। संजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कि आपने इतने खूबसूरत खूबसूरत से मैसेज और वाकयात जो है मुझे भेजे। तो बस आखिर में मैं कुछ अपने तौर पर कहना चाहूंगा आप सबसे इस दिन के हवाले से कि हमारी पाक अफवाज को ये पैगाम भी देना चाहूंगा कि हम आज भी उनके साथ हैं और साथ हमेशा रहेंगे। और पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा है वो बहुत बुलंद है, हम आपस में तो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं, मगर जब कोई बाहर की ताकत आकर हम पर बुरी नजर डालती है तो हम सब एक हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और यही बात जो है दुश्मन को हैरान और परेशान कर देती है कि मैंने तो इनको आपस में लड़ा दिया था लेकिन जब मैं हमले के लिए आ रहा हूं तो ये फिर एक हो गए, ये क्या बात है भाई।

0: All right, आ चुके हैं वापस. आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और आज है यौमे दिफाए पाकिस्तान स्पेशल प्रोग्राम और सुबह से लेकर अब तक आप हमें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे. अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस भेजिए, अपना मैसेज टैग कीजिए, लिख भेजिए हमें 366 पर. इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है. और आज के नेशनल सॉन्ग्स होंगे, ISPR के गाने होंगे और हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे तमाम शहीदों को, तमाम गाजियों को, अपनी पाक अफवाज को, अपनी आर्मी को, अपनी नेवी को, अपने एयरफोर्स को, जो हर लिहाज से सबसे जबरदस्त है. जब मुल्क की दिफा का मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी पाक फौज हमेशा आगे रहती है. मुल्क पे जरा सी भी कोई आंच आ जाती है तो पाक अफवाज अपनी खिदमात देने में सबसे आगे होती है. हमारी सरहदों की हिफाजत करना, हमारे शहरों की हिफाजत करना, हम सब की हिफाजत करना हमारी पाक अफवाज का परचम लहराया सेवा है और ये हमेशा अपने फर्ज में आगे आगे रहते हैं और हमेशा ये कामयाब रहते हैं. और हमारी ढेर सारी दुआएं अपने पाक अफवाज के लिए है, अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए है, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, उन तमाम जवानों के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है, जवानों के लिए है, सबके लिए है कि आप लोग जबरदस्त हैं, ग्रेट हैं, बहादुर हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं. जो ड्यूटीज आप करते हैं, जो फराइज आप अंजाम देते हैं, वो एक आम इंसान नहीं कर सकता. ना आपकी कोई ईद होती है, ना आपकी कोई बकरीद होती है, ये तमाम चीजें आप सरहदों पर कर रहे होते हैं, वहीं पर ही अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं, अपने घर वालों से दूर होते हैं. और जो फैमिली से दूर होता है, उसके दिल का हाल वही जान सकता है कि जो इस डगर से गुजरा हो. लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ये काम कर रहे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, इस मोहब्बत के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस माँ के लिए. एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे. जाना कहीं है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज.
1: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. Is dharti ke rakhwalo, tumhe Allah salamat rakhe. 6 September, Yom-e-Difa-e-Pakistan. Is dharti ke ghazi और शहीदों को FM 100 का सलाम.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
2: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365. You are listening to Music Masti.
0: All right, आ चुके हैं वापस. प्रोग्राम में शामिल करते हैं मंजिल पाकिस्तान, ISPR का ऑफिशियल सॉन्ग 2026. सुनिए और अपने जज्बों को उभारिए, अपने खून में जोश पैदा कीजिए और ट्रिब्यूट पेश कीजिए पाक अफवाज को.

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music must.
2: ऑलराइट, आ चुके हैं वापस और जबरदस्त आईएसपीआर का आपने जो ऑफिशियल सॉन्ग है 2026 आपने सुना और यकीनन आपके अंदर एक जज्बा उभर आया होगा, आपके खून में जोश आ गया होगा। आज है 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान, हमारी तारीख का सबसे रोशन दिन। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है भाई, ये उस जज्बे का दिन है जब पूरी कौम ने दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई थी दुश्मन के और दुश्मन को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया था। 6 सितंबर 1965 की रात 3 बजे भारत ने बगैर जंग के ऐलान के पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सरहदों पर क्रॉस करने की कोशिश की और लाहौर, सियालकोट और कसूर सेक्टर पर हमला कर दिया। उस वक्त भारत को अपनी तादाद और असलहे पर बहुत गुरूर था, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, अपनी जान पर खेलकर इस हमले को नाकाम बना दिया। ये जंग 22 सितंबर तक जारी रही और जब अक़वामे मुत्तहिदा की मदाखलत से जंग बंदी हुई तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तानी कौम में और पाकिस्तानी अफवाज में कितना जज्बा है। हम मुसलमान हैं, हम उस नबी की उम्मती में से हैं कि जिसने हमें सिखाया कि कभी दुश्मन के आगे सर नहीं झुकाना, कभी किसी काफिर के आगे सर नहीं झुकाना। ये सर झुकेगा तो सिर्फ रब के आगे झुकेगा, वरना कट जाएगा। हम शहीदों को सलाम पेश करते हैं, हम गाजियों को सलाम पेश करते हैं, हम अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं और अपनी पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं कि उस जमाने में जो भी थे, हमारे दादा, चाचा, नाना, हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने पाक अफवाज के कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ दिया। उस जमाने की खवातीन ने बहुत ज्यादा साथ दिया। तो जनाब, सल्यूट है पाक अफवाज को। एक और नेशनल सॉन्ग आपकी फरमाइश पे हम शामिल करने लगे हैं, साहिर अली बग्गा की आवाज में, वतन आसमां।

0: You are listening. Music must be.
1: जी मेरे दोस्तों, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और गांव में दिफाए पाकिस्तान स्पेशल प्रोग्राम है। 6 सितंबर है, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और काफी देर से आपके मैसेजेस यहां पर मौजूद हैं। यकीनन पढ़ना चाहिए मुझे इन मैसेजेस को। फौजिया हमें मैसेज कर रही है, सलाम करिए। वालेकुम असलम, और आपने आज के दिन की मुबारकबाद पेश की है और ट्रिब्यूट पेश किया, सल्यूट पेश किया अपनी पाक अफवाज को, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नासिर ने हमें मैसेज किया है और आपने कहा है पाक फौज जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत नारा है और यकीन लगाना चाहिए, वैसे तो तमाम दिन में लगाना चाहिए लेकिन आज बड़ा स्पेशल डे है और पाक अफवाज को हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, सल्यूट पेश कर रहे हैं, तो आज के दिन तो लाजमी लगाना चाहिए। फजीला मैसेज करिए, सलाम करिए। वालेकुम असलम, आपने नेशनल सॉन्ग की फरमाइश की है और आपने कहा यौमे दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो, 6 सितंबर मुबारक हो। दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे हमने। जी हाँ बिल्कुल, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे बगैर कैरियां खिलाए। हसन हमें मैसेज करें, सलाम करें। वालेकुम असलम, और आपने ट्रिब्यूट पेश किया है उन तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने पाक अफवाज की शाना बशाना खड़े होकर उस जमाने में उनका साथ दिया। चले बहुत जबरदस्त बात है, और मैंने आपसे कहा था कि पाक अफवाज को ट्रिब्यूट पेश करेंगे और ट्रिब्यूट के साथ साथ उस जमाने के जो हमारे आबा अजदाद थे, मर्द और खवातीन सब ने शाना बशाना खड़े होकर पाक अफवाज का साथ दिया और उनको मोटिवेट किया, उनका हौसला बुलंद किया और उनसे कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब फौज के साथ कौम मिल जाती है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इमरान मैसेज करें, सलाम कह रहे हैं। वालेकुम असलाम, और आपने कहा है कि आपने नेशनल सॉन्ग सुनना है, आपको सुनवा देंगे। युसरा हमें मैसेज करें, युसरा थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम असलाम, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली, आपने हैप्पी संडे कहा है। रहीम हमें मैसेज करें, सलाम करें। वालेकुम असलम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी भी फरमाइश मैंने नोट कर ली है और पहली मरतबा सुनने आपको खुशामदीद कहेंगे। आलम हमें मैसेज कर रहे हैं, आपने कहा यौमे दिफाए पाकिस्तान मुबारक, 6 सितंबर मुबारक और पाक अफवाज को सल्यूट और सलाम। बहुत अच्छी बात है, अपने राइट मैसेज में जाइए, के चाय लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJMFUS पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। एक ब्रेक आते हैं वापस।
0: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती।
2: छह सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
3: अपने मुल्क को काम के लिए बाद है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम।
4: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
6: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
7: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365. You are listening to Music Masti.
9: India has launched missile strikes against Pakistan. Significant act of aggression. All eyes are now on Pakistan's response.

जी जनाब आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती, मुझे कहते हैं महफूज। हर संडे दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारा आपका साथ रहता है। और आज का बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है यौम दिफाए पाकिस्तान डिफेंस डे। हम आपके साथ 5 बजे तक मौजूद हैं। आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं नेशनल सॉन्ग्स की, तो यकीनन आप हमसे कर रहे हैं और हम यहां पर मौजूद हैं 6 सितंबर मनाने के लिए। तो जनाब 6 सितंबर डिफेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है उन तमाम जवानों को याद करने के लिए जिन्होंने 1948, 1965, 1971 कारगिल और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान की, जामे शहादत नोश की। 1965 की जंग ने साबित किया है कि हमारी अफवाज दुश्मन के सामने चट्टान की तरह है और कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। ये दिन बड़ी तादाद वाले दुश्मन के अजायम को खाक में मिलाने की अलामत है। इस जंग में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने लाहौर में बीआरपी कैनाल पर 5 दिन तक दुश्मन को रोके रखा और जाम शहादत नोश की और निशाने हैदर पाया। तो बड़ा जबरदस्त दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कौम के लिए, पाकिस्तानी अफवाज के लिए। और सुबह 9 बजे जीएचक्यू नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पे यादगार शौदा पर फूल रखे जाते हैं। मजार कैद कराची में और अल्लामा इकबाल के मजार पर गार्ड्स की तब्दीलियां आती हैं। टेलीविजन पर और रेडियो पर शो किए जाते हैं, 1965 के हवाले से बात की जाती है, तराने बजाए जाते हैं और कौम में वही जोश और जज्बा पैदा किया जाता है जो 1965 में था। तो आइए उस जोश और जज्बे के साथ आप हमसे फरमाइश कीजिए, नेशनल सॉन्ग की बात कीजिए, पाकिस्तान की, पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तानी अफवाज की। अपने राइट मैसेज में जाइए, एचआई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख दीजिए हमें 3636 पर। इसके साथ facebook.com/rjmehfooz।

0: You are listening to Music Masti. Masti.
1: 6 सितंबर यौम दिफा और शहदा, शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
3: फ्रॉड और जाली पैगामात से होशियार रहें। फ्रॉड करने वाले जाली पैगामात और कॉल्स के जरिए आपकी जाती या माली मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे पैगामात पर बिल्कुल यकीन न करें जिनमें इनाम, अकाउंट बंद होने या आपको आपकी जाती मालूमात की वेरिफिकेशन का कहा जाए। याद रखें, ये फ्रॉड भी हो सकता है। आइए जानते हैं फ्रॉड के आम तरीके। पीटीए बैंक या सरकारी अदारे का नुमाइंदा बनकर आपसे आपकी जाती मालूमात तलब करना, जाली कोरियर या हुकूमती स्कीमों का नाम इस्तेमाल करते हुए आपको झांसा देना, आपको मशकूक लिंक्स या QR कोड्स भेजना। याद रखें, पीटीए बैंक या कोई भी सरकारी अदारा कभी भी फोन, ईमेल या पैगाम के जरिए आपसे पासवर्ड, OTP या CNIC नहीं मांगता, लिहाजा किसी भी मशकूक लिंक पर हरगिज क्लिक न करें और अपनी मालूमात हरगिज किसी के साथ शेयर न करें। और अगर कोई फ्रॉड कॉल या पैगाम वसूल हो, इसका जवाब मत दें। अपनी शिकायत का इंद्राज complaint.pta.gov.pk या पीटीए CMS मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट करें या पीटीए की हेल्पलाइन 0800-55055 पर अपनी शिकायत का इंद्राज करें। व्हाट्सएप पर मौसूल होने वाला पैगाम बराह रास्त व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें। इसके अलावा साइबर क्राइम के हवाले से आप अपनी शिकायत का इंद्राज 1799 या complaint.nccia.gov.pk पर भी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड के लिए cpd.helpdesk.sbp.org.pk पर विजिट करें। याद रखें, आपकी आगाही ही आपका तहफ्फुज़ है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी।
4: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
0: FM 24/7 365. You are listening to Music Masti.

ऑलराइट, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। यौम दिफाई पाकिस्तान का स्पेशल प्रोग्राम हम कर रहे हैं 6 सितंबर का डिफेंस डे का, और सल्यूट पेश कर रहे हैं हम, सलाम पेश कर रहे हैं हम तमाम शहीदों को, गाजियों को, पाक अफवाज को, पाकिस्तानी आवाम को और अपने पाकिस्तान को। जनाब 6 सितंबर का जिक्र हो और एमएम आलम का जिक्र हो ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 6 सितंबर के जिक्र में एमएम आलम का जिक्र लाजिम है। 6 सितंबर की रात को एयरफोर्स के पायलट मोहम्मद महमूद आलम, जिन्हें हम एमएम आलम भी कहते हैं, सरगोधा एयरबेस पर एक मिनट के अंदर अंदर भारत के 5 जंगी जहाज मार कर आए और ये आज तक दुनिया की तारीख का रिकॉर्ड है। और उस रात एपीएफ ने भारत के तकरीबन 23 जहाज तबाह किए थे। फिर सुन लीजिए कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एमएम आलम को हम सल्यूट पेश करते हैं उनकी कारकर्दगी पर, कि उन्होंने बहुत डेडिकेटेड होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इसके अलावा सियालकोट में जो लड़ाई हुई उसे बैटल ऑफ चविंडा भी कहते हैं, और दूसरी आलमी जंग के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। जनाब दूसरी आलमी जंग के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी। भारत के 600 टैंकों का मुकाबला जो किया हमारे 200 टैंकों ने किया, और दुश्मन को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और आज भी उस इलाके को लोग फख्र से याद करते हैं, उस कारनामे को लोग फख्र से याद करते हैं। तो जनाब यह है जोश, यह है जज्बा, यह है डेडिकेशन, यह है मोहब्बत वतन से, यह है मोहब्बत कौम से, यह है मोहब्बत अपनी जॉब से। तो इसीलिए हम मनाते हैं 6 सितंबर 1965 की याद में ये दिन, यौम दिफाए पाकिस्तान डिफेंस डे, और सल्यूट पेश करते हैं पाक अफवाज को, तमाम शहीदों को जो हमेशा तैयार रहते हैं अपने वतन की हिफाजत के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन को पीछे ढकेलने के लिए, दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए।

जी मेरे दोस्तों आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती यौम दिफाया स्पेशल प्रोग्राम, 6 सितंबर का स्पेशल प्रोग्राम, और हम बात कर रहे हैं पाक अफवाज की और पाक अफवाज के साथ साथ आवाम के किरदार की। जी मेरे दोस्तों, ये जंग पाक अफवाज ने भी लड़ी और शाना बशाना थे आवाम। लाहौर के लोगों ने अपनी छतों पर चढ़कर मस्जिदों के लाउडस्पीकर से फौजियों को रास्ता दिखाया। ट्रक ड्राइवर हजरात ने बिना पैसों के असलाह और राशन पहुंचाया। रेडियो पाकिस्तान से मलका तरन्नुम नूजहां की आवाज में ऐ वतन के सजीलो जवानों, पूरी कौम ने सुना और नया खून जोश पाने लगा। आपकी रगों में जब आप ऐसे तराने सुनते हैं तो नया खून जोश मारने लगता है। तो जब ये तराना बजा तो ऐसा ही हुआ। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, उन्होंने जामे शहादत नोश की। तो जनाब बहुत सारी बातें हम करेंगे। अभी हम निशाने हैदर के हवाले से भी बातें करेंगे और उनके भी हम नाम बताएंगे जो हम स्कूल के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी बातें हम करेंगे। और आप भी बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करेंगे। आपने पाक अफवाज को सलाम पेश करना है, शुहदा को सलाम पेश करना है, गाजियों को सलाम पेश करना है, उन बुजुर्गों को, उन जवानों को, मर्द खवातीन को सलाम पेश करना है जो फौज के शाना बशाना उनका साथ देते रहे। बात छिड़ी है मलका तरन्नुम नूर जहां के उस कौमी नगमे की, उस नगमे की कि जिसने खून में उबाल पैदा किया, खून में जोश पैदा किया। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं।

0: You are listening.
1: You are listening.
0: Music must be.
2: All right, आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और मुझे कहते हैं महफूज। 4:21 हो चुके हैं। यौमे दिफाए पाकिस्तान स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आज 6 सितंबर है, डिफेंस डे है। हम सैल्यूट पेश कर रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज को, शोधा को, गाजियों को, पाकिस्तानी आवाम को जिन्होंने साथ दिया पाक अफवाज का। हमने कहा था हम बात करेंगे निशाने हैदर के हवाले से कि अब तक कितने लोगों को निशाने हैदर मिल चुका है। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद जिन्होंने 1948 में कश्मीर वॉर पे निशाने हैदर हासिल किया। मेजर मोहम्मद तुफैल मोहम्मद शहीद जिन्होंने 1958 में निशाने हैदर हासिल किया। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जिन्होंने 1965 में निशाने हैदर लिया। पायलट ऑफिसर राशिद मीना शहीद जिन्होंने 1971 में इंडो पाक वॉर के नतीजे में निशाने हैदर लिया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद जिन्होंने 1971 में इंडो पाक वॉर में निशाद हैदर लिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद 1971 इंडो पाक वॉर निशाने हैदर। सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद 1971 इंडो पाक वॉर निशाने हैदर। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 1971 इंडो पाक वॉर। जब मैं इनका नाम लेता हूं तो मुझे अपने नाम पर बड़ा फख्र होता है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 1999 कारगिल वॉर में निशाने हैदर दिया गया। हवलदार लालक जान शहीद 1999 में कारगिल वॉर में निशाने हैदर दिया गया। और एक नायक सैफ अली जंजुआ शहीद जिन्हें कश्मीर वार 1948 में हिलाले कश्मीर दिया गया कि जो कि बराबर है निशान हैदर के। इन तमाम शोधा को मेरा सलाम, FM 100 पाकिस्तान का सलाम, पूरे पाकिस्तानी कौम का सलाम। तो जनाब आप भी हमसे बात कीजिए और बताइए कि आज आप क्या महसूस कर रहे हैं डिफेंस डे पर, 6 सितंबर पर, यौम दिफाए पाकिस्तान पर। सलूट पेश कीजिए पाकिस्तानी अफवाज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की इस मिट्टी को जिसमें शहीदों का लहू है। अपने राइट मैसेज में जाइए कि अच्छाई लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए और 3636 पर रवाना कीजिए। इसके साथ साथ facebook.com/RJ महफूज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक और नेशनल सॉन्ग।

0: You are listening to Music Must.
1: जी जनाब, एक बहुत ही खूबसूरत सी दुआ

0: वतन के लिए खूबसूरत सी दुआ, तू सलामत रहे वतन। वतन सलामत है तो हम सलामत हैं। हम पूरी दुनिया में अपने वतन के नाम से जाने जाते हैं, हम पाकिस्तानी कहलाते हैं। हमारा फर्ज यह है कि हम अपने वतन की लाज रखें, कोई ऐसा गलत और घिनौना और ऐसा बुरा काम ना करें कि हमारे वतन का नाम मिट्टी में मिले। क्योंकि वतन लोगों से और लोगों से वतन, हम जहां जाते हैं वहां अपने वतन को साथ लेकर जाते हैं। तो ख्याल ये रखना है आपको कि आपने अपनी मिट्टी की लाज रखनी है, अपनी मां की लाज रखनी है, अपने वतन की लाज रखनी है। जब भी कोई आपको बुलाए तो अच्छे नामों से बुलाए, आप फख्र महसूस करें, फख्र पाकिस्तान बने आप। तो 6 सितंबर हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं पाक अफवाज को, आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को, और अपनी स्मृति को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जिसमें शहीदों का खून है। तो अपने राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए, लिख भेजिए हमें 3666 पर। इसके साथ साथ facebook.com/RJMahfooz पर, जहां पर मेरे स्टेटस लगाए, आइए और बताइए कि आप क्या कहते हैं आज के बारे में। आपके मैसेजेस हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक है, उस ब्रेक की तरफ जाते हैं।
1: यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक मस्ती।
2: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
3: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में करंगी नंबर 5, आजम बस्ती, कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं। बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
5: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: facebook.com/FM247365 FM247

0: You are listening to Music Must.
1: जी जनाब, काफी देर से आपके मैसेजेस मैंने नहीं पढ़े और मैं आज कुछ ज्यादा बातें कर रहा हूं क्योंकि बात करने का ही दिन है ये और ट्रिब्यूट पेश करने का दिन है, अपने दिल के जो जज्बात हैं उनका इजहार करने का दिन है, तो यकीनन मैं इजहार कर रहा हूं। आपके मैसेज मुझ तक पहुंच चुके हैं। आसमा फरीद हमें मैसेज करी है, सलाम कह रही है और आपने हैप्पी डिफेंस डे हमें दिफाई पाकिस्तान में मुबारकबाद पेश की है और सल्यूट पेश किया है। इसके अलावा जावेद हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, आपने कहा है ग्रेट शो, बहुत बहुत शुक्रिया। अथर हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं और आप पाक अफवाज को सलाम पेश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैदा हमें मैसेज कर रही है, सलाम करिए, महफूज भाई कैसे हैं? महफूज भाई ठीक हैं, हैप्पी संडे आपने कहा है और आज के दिन की मुबारकबाद दी, बहुत शुक्रिया। हसीब हमें मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें, वालेकुम असलम, शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। जावियान मैसेज कर रहे हैं, सलाम करें, वालेकुम असलम, पहली मरतबा सुन रहे हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे और साथ साथ आपने मुबारकबाद दी है यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। इमरान मैसेज करें, इमरान बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए, आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली है, पूरी करने की कोशिश करेंगे। हैदर मैसेज करें, हैदर थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वालेकुम अस्सलाम, आपकी भी फरमाइश हमने नोट कर ली है, पूरी करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा सलीमा मैसेज करिए, सलीमा शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए और आपने कहा यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक, 6 सितंबर को सल्यूट पेश करते हैं अब। और सैयद हुसैन हमें सुन रहे हैं, वालेकुम असलम, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने और पसंद करने के लिए। आप सबकी फरमाइशें हम पूरी कर रहे हैं और ये फरमाइश आप ही की है।

0: You are listening to Music Masti. Masti. Masti.
1: छह सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

0: You are listening to Music.
1: जी मेरे दोस्तों, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बात हो रही है 1965 की जंग की। 6 सितंबर 1965 की रात को भारत ने बगैर ऐलाने जंग के लाहौर, सियालकोट और कसूर के महाजों पर हमला कर दिया था। उसका ख्याल था कि वह सुबह का नाश्ता लाहौर जिमखाना में करेगा, लेकिन पाक फौज के जवान, अफसर, आवाम ने मिलकर उसे नाकाम बना दिया। लाहौर के बीआरबी कनाल पर हमारी फौज ने अपने जिस्मों से बंद बांध दिए। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर ने 5 दिन तक मुसलसल दुश्मन को रोक के रखा, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। सियालकोट के महाज पर चवंडा की लड़ाई दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जहां हमारे जवानों ने जान पर खेलकर दुश्मन को 100 से ज्यादा टैंक तबाह किए। स्क्वाड्रन लीडर एमएम आलम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज गिरा दिए, जो अब तक का आलमी रिकॉर्ड है। हमारी नेवी किसी से कम नहीं। ऑपरेशन द्वारका में पाक बहरिया ने भारत के द्वारका रडार स्टेशन को तबाह करके दुश्मन की कमर तोड़ दी। सलूट पेश करते हैं हम पाकिस्तानी अफवाज को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, पाकिस्तानी आवाम को, जिन्होंने साथ दिया पाकिस्तानी अफवाज का। और आज का खास प्रोग्राम खास आप ही के लिए, पूरा दिन आप 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान की नशिया सुनेंगे, कौमी नगमे सुनेंगे, आईएसपीआर के सॉन्ग सुनेंगे। प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों।

0: You are listening to Music Masti.
1: जनाब, वक्त कैसे गुजर गया मुझे नहीं पता चला. जब इंसान में जोश हो, जज्बा हो, तो वक्त का पता नहीं चलता है. आज का ये जोशीला प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा. आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया. जिन्होंने नहीं भी किए मैसेजेस खामोशी से सुना उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने नेशनल सॉन्ग्स की हमसे फरमाइश की और हमने आपके लिए पेश की. हमने ढेर सारी बातें आपसे की 1965 के हवाले से, 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफाए पाकिस्तान हम मना रहे हैं और पूरा दिन आप एफएम 100 पाकिस्तान की खुसूसी नशरियात सुनेंगे और साथ साथ आप हमारा साथ देंगे. आपके साथ की हमेशा जरूरत थी, है और रहेगी. एक बार फिर पूरे वतन को, पाकिस्तानी अफवाज को सल्यूट और सलाम, और ये दिन बहुत मुबारक हो. जहां रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों को रखें खुश, बड़ों का करें अदब, छोटों से करें प्यार, अपने वतन का, अपने परचम का करें एहतराम. और जब दुआ के लिए हाथ उठाएं महफूज करें एफएम 100 पाकिस्तान को, अपनी दुआ में जरूर याद रखिए. अगर आपके वालदैन हयात हैं उनसे मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि दुनिया में यही आपकी जन्नत है, ऊपर जन्नत का वसीला. मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी. जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, जिसके बगैर ये प्रोग्राम अधूरा. ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद-ए-दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है।

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफाद आमा के लिए वजारत इत्तिलात व नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Across the nation.
4: This is FM 100. FM 100. 100. 100.
5: Area 2 secure, sir.
0: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है। छह सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज।

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहां खाब वहां HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा.
2: And Phoenix लगा और भूल जा. Phoenix लगा और भूल जा.
3: facebook.com/fm247365
4: FM 247 365.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान। इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: secure.
1: Join the 5th Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon. Hands-on workshops and awareness sessions across 16 cities of Pakistan. Register now at cyberhackathon.pk.
2: An initiative of Ministry of IT and Telecom and Ignite.
3: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
6: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanum.org.pk विजिट करें.
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL. HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
7: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है. अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं. इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं. वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं. वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है. बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है. पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें. www.pta.gov.pk. मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: एंड सर सब नाइट्रो फॉल्स को लगा और जीतता जा.
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
10: ख्वाब तो सब देखते हैं, बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है.
11: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखी.
12: टाइम से मनु ऐसे के मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा.
13: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया.
10: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें.
14: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा.
10: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देमाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम. मुलगीर क्रैकडाउन जारी. एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं. अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें. मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़राए इख्तियार करें. इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचें. ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें. हुकूमत पाकिस्तान.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
15: बैंकिंग सहूलियात जैसा कि माइक्रो फाइनेंस एप्स, जैस कैश, इजी पैसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमूमन सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मुंसलिक होते हैं, जिसके जरिए ये अकाउंट्स न सिर्फ फाल किए जाते हैं बल्कि किसी तब्दीली की सूरत में तस्दीक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं. अगर कोई सिम आपके नाम से हटा दी जाए या तवील अरसे तक इस्तेमाल न होने की वजह से रिसाइकल होकर दोबारा जारी कर दी जाए तो यही नंबर किसी दूसरे शख्स को दिया जा सकता है. और अगर बर वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की जाए तो नया सारिफ इस नंबर से मुंसलिक आपके सोशल मीडिया मीडिया या दिगर डिजिटल अकाउंट्स तक रसाई कर सकता है। ऐसे अकाउंट से की जाने वाली किसी भी गैर कानूनी गुमराह को या तौहीन आमेज सरगर्मी की जिम्मेदारी असल अकाउंट होल्डर पर आयद हो सकती है, जिसके नतीजे में कानूनी पेचीदगियां और शोहरत को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। इसी तरह अगर पुराने नंबर से मुंसलिक बैंकिंग या मालियाती एप्स महफूज ना की जाएं तो माली धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा भी पैदा हो सकता है। अपने ऑनलाइन तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये इकदामात जरूर उठाएं। जैसे ही कोई नंबर अपने नाम से हटाएं या तब्दील करें, फौरन अपने तमाम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपडेट कर लें। अपने बैंक, माइक्रो फाइनेंस और पेमेंट एप्स में हमेशा अपना मौजूदा और फाल नंबर रखें। अकाउंट्स में मजबूत सिक्योरिटी फीचर्स फाल करें, जैसा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और अकाउंट रिकवरी की सेटिंग्स। डिजिटल तहफ्फुज़ का आगाज सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल से ही मुमकिन है। बरवक्त और पेशगी इकदाम आपकी शनाख्त, माली तहफ्फुज़ और कानूनी हैसियत में मददगार साबित होते हैं। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, पीटीए।
0: FM 24/7/365

0: This program is brought to you by HBL Freedom Account. जहाँ खाब वहाँ HBL.
1: And सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीतता जा.
2: And फिनिक्स लगा और भूल जा. फिनिक्स लगा और भूल जा.
3: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
4: FM 100.
5: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान.
6: अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: Come on.
1: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: 6 सितंबर यौम दिफा और शहदा शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए शहदाए पाकिस्तान को सलाम
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपने करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस फंड बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब Vaha HBL
5: 100 FM
3: HBL Freedom Account ke saath Muft Fund Transfer Muft Checkbook Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account Jahan Khwab Vaha HBL
1: This program is brought to you by
3: HBL Freedom Account Jahan Khwab वहां HBL
6: एंड सरसब्स नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा एंड

0: एरिया टू सिक्योर सर।
1: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है।
2: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये जाने मिट्टी के जाने, ये जाए ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक।
1: 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे।
3: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
4: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नैनोटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
5: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
7: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
10: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
11: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे. 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान. इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम.
0: दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
2: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा.
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
4: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
5: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
6: शौकत खानम कराची की तकदीर.
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.
8: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट. जहां ख्वाब वहां HBL.

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
2: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान। मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBO ब्रांच। HBO फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
3: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा। श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई है, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: 100 FM।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
5: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
6: FM 247 365.

0: This is FM 100.
1: Come on.
2: टूटे जो तेरे पैर की जंजीर तो क्या हो, मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या हो।
3: 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Area 2 secure sir.
3: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है।
4: ये बंदे मिट्टी के बंदे, ये झंडे मिट्टी के झंडे, ये चाहे ऊंचे तारे तक, चांद के पार किनारे तक।
3: 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं, जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं, जिन्होंने कहा था वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज।

6 सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।

It's 8:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. 6 सितंबर यौम दिफा व शहदा, शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 247365

13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

0: 6 सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
1: अपने मुल्क को गांव के मेहमान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
4: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, रॉन्ग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
8: ये मुफाद आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेर इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मंसूख منسوخے سے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناطرہ سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

0: Golden Classic on FM 100. On FM 100. FM 100's time check. It's 10 p.m.
1: 6 सितंबर यौमे दिफा व शहदा शहीदों के उन साथी उन गाजियों को सलाम जो हमारे ख्वाब पूरे करते हुए खुद अधूरे हो गए शहदाए पाकिस्तान को सलाम.
0: This program is brought to you by
2: Shaukat Khanum, Karachi ki Takleef.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. FM 100.
1: 31 saal. FM 100. Aapki awaaz. Assalamu alaikum, Pakistan.
0: Assalamu alaikum, Pakistan.

0: इस धरती के रखवालों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे। 6 सितंबर यौमे दिफाए पाकिस्तान, इस धरती के गाजी और शहीदों को FM 100 का सलाम। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: शौकत खानम कराची की तकलीफ।
0: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कूट उसका नौजवान तबका है। पाकिस्तान की 60% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मुमान है। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: FM 100's time check. It's 11 p.m.
1: सितंबर वो दिन जब वतन की हिफाजत के लिए हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। 6 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों की हिम्मत, जज्बे और कुर्बानी को सलाम पेश करने का दिन है। अपने शहीदों को याद करें, अपने गाजियों को सलूट करें और मिलकर कहें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
0: This program was brought to you by
2: Shaukat Khanam, Karachi ki Takleef.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
3: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: हैं, हमें अपनी ही मटी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: facebook.com/fm247365

0: एरिया टू सिक्योर सर।
1: कुछ कहानियाँ लफ्जों से नहीं, लहू से लिखी जाती है। छह सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये उस माँ के आंसू हैं जिसने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए। ये उस जवान का लहू है जो लाहौर की सरहद पर आखिरी गोली तक लड़ता रहा। 1965 में दुश्मन ने हमारी जमीन को देखा था, लेकिन उसे हमारे हौसलों का अंदाजा नहीं था। आओ इस 6 सितंबर उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने कहा था, वतन रहेगा तो हम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाम।